उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

चल चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल।

चींटी के पर में हाथी सारे बांध दिए नन्नी चींटी के पर में बैलूनों की छतरी से उतरे परियों के घर में फिर किसी

उजान रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतु में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहट द बेस्ट उजाला रेडियो।

ये बम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। ये बम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले

फाम है, सच्चा बदनाम है, झूठा गुलफाम है, सच्चा बदनाम है। बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले का हर

को बोले बटाटा, यहाँ नमस्ते को कहते हैं टाटा, यहाँ अमरूद पेरू और अंडा है पैदा, यहाँ पर हुए हैं नए नाम पैदा, ये जिसको बुलाएं करें।

है पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है पर गड़बड़

हमरा अब से मेरा तू हमरा मैं भी तेरा हूँ। अरे फिल्म मलंग में तीन हॉफ रोल आदित्य रॉय कपूर दिशा पटानी एन ओक अनिल कपूर इन देजे फिल्म आउट इट यार 2020 एन इट इज वीर ना 2013 ना 7 यार दैट अनिल कपूर अ रोल आन हैव गेनोमन फन पुलिसी एजेंट द लास्ट केयर दैट हाई गएक्टेड हैव एज पुलिसी एजेंट वाज इन द फिल्म या मिसकिन वेट यू इट वेल द फिल्म शूट आउट एट वडाला आउट इट यार 2013 Beautiful songs and beautiful Ghana here on the one and only Ujala Radio. Aur wo bhi Amit Jairam ke saath. It is mera aur aapke saath here by the one and only. Aur film ka naam hai Made in China. Aur Ghana ka naam hai? Ghana ka naam hai Valam. The stem van Arijit Singh.

तुझे जितना मैं प्यार करूं यार किसे और से ना किया दिस्टेम फन अरिजीत सिंह असम में प्रिया शराया हियर बाय द वन एंड ओनली उजाला रेडियो हिलक गाना आप सभी के लिए eventjes terug naar het jaar 2007. De stem van Himesh Reshamiya. Organa's naam is Meri Awargi. En dit is de remixversie.

उर राह में उनसे मुलाकात हो गई और जिससे हम डरते थे वही बात हो गई। कुमार सानू एंड अलका जी, फिल्म का नाम विजय पट एंड उजाला रेडियो। तो जाने है तो मोई लगे है तो दान एक और गीत, हाँ फिर कुमार सानू जी की आवाज में होंगे।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

मेरी हर सांस हर वक्त तेरा ही नाम लेती है। Life, life, and I did hope stop.

टिप टिप बरसा पानी भी आपने सुने उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है। आयत द फिल्म मोहरा उजाला रेडियो के जरिए भी हम लाने वाले हैं दिल है सनामी स्टॉन फ्रॉम सूरीनाम और भी रॉबी मक्का के साथ अभी हम आपसे या उनसे हम बात करेंगे। एक सो मेटेन प्राट मेट रॉबी मक्का दिस ब्लाइव अफगेस्टेम्ड सनाम दिस के समाचार एंड रॉबी इज वेयर टू रिफ ऑन वैकेंसी। आज शुरू हो गया है नवरात्र, हर को नवरात्रि का बधाइयां पेश किया जा रहे हैं। शुभ नवरात्र उजाला रेडियो के फुल टीम की तरफ से। इस गाने के बाद में सरनाम देश का समाचार, दिल है सरनामी दस्तान फॉन सूरीनाम ज़ोमटेन। इस गाने के बाद में शुभ नवरात्रि, शुभ नवरात्रि, शुभ नवरात्रि, बधाई हो।

उजाला रेडियो के फुल टीम की तरफ से आप सभी को बहुत सारे बधाइयां और शुभकामनाएं पेश किया जा रहा है। और उजाला रेडियो के जरिए अगर आपको खास प्रोग्राम बनवाना है, नेम कॉन्टैक्ट मैथ उजाला रेडियो फिया info@ujala.nl। उजाला रेडियो के जरिए हम यहीं से अब शुरू करते हैं वही प्रोग्राम दिल है सनामी दस्तान फांसुरी नामा।

रात तो और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

Het is maandag, Baratarik, Oktoberka programma zonder hem. Mijn hoe Lloyd maar weer. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Je hebt me net een uur lang ook gehoord met Robbie Makka, maar we gaan lekker verder door. Aatske Sjaamke programma, Coffee Chai Middagshow mee. En zometeen sluit hier aan hier in de studio. Abis studio mee aan en wallen. Anand Chandrikasin, dus ik zat hem baat kunnen wat hij, met hem praat ik dan over het nieuws van vandaag, van de komende dagen, ja, kuch aur luchtig onderwerp Riga, toch hem baat kringen. Anand is onderweg, maar ham Martina. Ujala Radio के जरिए प्रोग्राम में हम एक नफ़ा आपको सुनने को जा रहे हैं और आज के इस शाम के प्रोग्राम में लातो इवे नार पार नुम्स लुइसरे एंड दन ज़ोमतेन कम्ट आनंद वेल हियर इन द स्टूडियो इक हैव सन कॉफी ऑल क्लारस्टान सन मिसलिक कॉफी मोमेंट कम्ट रोक ज़ोमतेन आन और आज हम सोचली की ई गनवा चलावे खातिर कभी-कभी जब तू सवेरे-सवेरे जगले या जगे हैगा एंड ये स्टार्ट अप नाश पार्टनर तो एक ही बात जरूर बोलो थोड़ी है

0: wat leuks met je kinderen. Maak mooie herinneringen. Ha, oh, ik had in vakantie, Milena, toch? Om herinneringen te maken. Doe wat leuks. Of luister naar Jala Radio. Coffee Jai Middag Show. You are Ujala Radio. ये है सुनो और हम इंतजार कर रहे हैं आनंद चंद्र कसिंग के इंतजार में।
1: बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं।
2: हाँ सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर।
1: लेकिन बेटा इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है।
2: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
1: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
2: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
1: हार जाता है?
2: हाँ मौसी, अब ये कम्बक जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
1: तो क्या जुआरी है?
2: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है।
1: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
2: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है, अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी।
1: अरे बेटा मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
2: मौसी आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
1: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
2: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ।
1: अच्छा तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
2: बस मौसी खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
1: एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है।
2: अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
1: पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं।
2: अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया, बेचारा वीर न जाने क्या करेगा।
0: Ja, mooi dialoog uit de film Sholay. Amitabh Bachchan met Mausi. Maar in Mausi heb je naam nog niet gekend.

0: उजालास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया।
1: उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
3: क्या है।

उजाला ला रहे हैं जोंदा 1 नवंबर को जबरदस्त दिवाली कॉन्सर्ट और फकल ऑफ तो आपके लिए लाइव ऑन स्टेज रविंद्र सिंह बेदी मैट आविष्कार ऑर्केस्ट्रा टिकट वक्त पे आप खरीद लेना geen staspaskorting, tickets gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl.

0: उजाला पेश करे है डे वाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। एतवार एक तारीख नवंबर जोंदक इन नवंबर के दिन में थिएटर मीरवाट अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में दीपावली उत्सव मनाया जाएगा। दिवाली कॉन्सर्ट से पहले दिवाली फकल ऑप्टोक्ट में आप मुफ्त में हिस्सा ले सके हैं और दिवाली कॉन्सर्ट में लाइव ऑन स्टेज कलाकारों संजय जोधा, मौसमी, इंद्रोनील रॉय, रविंदर सिंह बेदी, सत्यम माता दिन, अविष्कार ऑर्केस्ट्रा के साथ जिसका लीडर है माएस्ट्रो रोनी भिखारी, प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पर होंगे सुधीर एंड जया। जोंदक इन नवंबर के दिन में 2:30 बजे से 2:30 से इन लोग एंड दिवाली फोर प्रोग्राम क्वार्ट ओवर थ्री ग्रेटेस्ट फकल ऑप्टोक्ट क्वार्ट फोर फीर से कॉन्सर्ट के शुरुआत हुई पहला भाग। टिकट के दाम है 20 यूरो और 15 यूरो। इसमें है एक ड्रंक के ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट गार्डरोब और ग्रेटेस्ट टॉयलेट गब्रक। जाने के चाहिए आपके कि इस बार स्टार्ट पास न रही। टिकट और जानकारी के लिए meerfaart.nl जल्दी से टिकट खरीद लिए नहीं तो आपके पछताई के पड़ी। और हाँ, हमें तो जाए के पड़ी और आपके तो आवे के पड़ी। हाँ, दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जोंदक इन नवंबर के दिन में थिएटर द मीरफार्ट अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। अभी से आपको शुभ दीपावली।
1: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

0: उजालास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया।
1: चलिए सुनो, चलते हैं अगला नगमा की तरफ। उजाला रेडियो पर सुनिए ये नंबर।

डलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सी मुस्कुराओ भैया। उजाला कॉफी चाय मिदक शो इस प्रोग्रामा जहाँ पे हम लोग तोलों के भी हसायला या हसायला खनी हसायला ना रोलायला मैं खनी हसायला हम लोग सोहा पसंद की आवाज़ में भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है सुनो और उजाला रेडियो के जरिए लातो एव खान नार अत न्यूज या हेडलाइंस फॉन फंडाग यू आर उजाला रेडियो पर Een nieuwe week, een nieuwe koffie chai. Voor deze maandag heb ik de nieuwsselectie opnieuw opgebouwd voor jullie. Orkon Samachar Hega. Grote IT-storing bij Albert Heijn, Ethos en Gallinghal. Dus toen waren je uit boodschappen kreeg. Want verkeerde prijzen, zei het Hega. Hoi, ze keer toen manga varie. Dus bestrijd toen had je je uit. Mwape. Door een cyberveiligheidsincident zijn website en apps niet beschikbaar. Boodschappen worden niet bezorgd en in winkels kunnen verkeerde prijzen op de elektronische schapkaartjes staan. De oorzaak wordt nog onderzocht. D66 wil kinderen bij vermoedens van ernstige mishandeling sneller kunnen spreken. Een nieuw initiatief voor wetsvoorstel moet hulpverleners de mogelijkheid geven om binnen 48 uur met een kind te praten. Zo nodig zonder toestemming van de ouders. Vol elektriciteitsnet belemmert verduurzaming Nederlandse industrie. Fabrieken willen overstappen van gasovens naar elektrische machines, maar moeten soms jarenlang wachten op een zwaardere stroomaansluiting. Bedrijven waarschuwen dat investeringen daardoor naar het buitenland kunnen verdwijnen. Max Verstappen, eindelijk Ujito. En of hij wereldkampioen wordt, nou, dat moeten we nog zien hoor. En Trump kondigde energiebestand aan, maar Russische aanvallen gaan door. Nou ja, dus wat voor zin heeft het als hij elke keer zegt van... Amico bestand aankondigt Krila. En die gasten gaan maar door daar in Rusland. Arbi Samachar Sunwalu Ashkees. Koffie chai middag zomer. Aanstaande woensdag is er ook een openbaar vervoerstaking in Nederland. Dus als jij naar je werk moet, check even of je kan gewoon thuis werken. Voor de mensen die thuis kunnen werken, beste toegereden. Grote staking ook in België treft openbaar vervoer en publieke diensten. Vakbonden protesteren tegen bezuinigingen. Er rijden minder treinen ook van en naar Nederland bij de Vlaamse publiek. Omroep VRT worden uitzendingen geschrapt of ingekort. Nieuwe dodelijke aanval op luchthaven Riyadh. Bij de vierde aanval in 5 dagen is opnieuw een dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook een luchthaven in Dammam is getroffen. De kans op verdere escalatie in het Midden-Oosten groeit. Ihapta mee? Ihapta? Mooi weer hier. Het is vakantie. Noord-Holland mee vakantie. De kinderen zijn thuis. Ook een hele prettige vakantie toegewenst namens Ujala Radio. Sabi Bachoko. Alle studenten komen. En als jij vrij bent, kam ze tot je tillillebarte. Omdat de kinderen vrij zijn, ook een fijne vakantie. Doe wat leuks met je kinderen. Maak mooie herinneringen. Ha, oh, ik ga niet vakantie willen, toch? Om herinneringen te maken. Doe wat leuks. Of luister naar Ujala Radio. Koffie Chai Middag Show. You are Ujala Radio ये है सुनवालो और हम इंतजार कर रहे हैं आनंद चंद्र कसिंग के इंतजार में
1: बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं
2: हां सच कहा मौसिया बड़ा बोझ है आप पर
1: लेकिन बेटा इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता बुरा नहीं मानना इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है उसके लक्षण कैसे हैं कमाता कितना है
2: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
1: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
2: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
1: हार जाता है?
2: हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
1: तो क्या जुआरी है?
2: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है।
1: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
2: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं, वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी।
1: अरे बेटा मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
2: मौसी आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
1: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
2: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं।
1: अच्छा तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
2: बस मौसी खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
1: एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है।
2: अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
1: पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं।
2: अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीर न जाने क्या करेगा।
1: अरे बेटे
0: या मोई डायलॉग आई द फिल्म शोले, अमिताभ बच्चन मैथ मौसी। माई मौसी के नाम हम ना जाने के कहना है।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो

ये उजाला रेडियो है। नवरात्र के उपलक्ष्य पर सुनने वालों, एक विशेष प्रोग्राम को आप लोग अब सुनेंगे। और प्रोग्राम का इस भाग हम लोग बना सकेंगे अम्स्टर्डम जोयतो से अपोतेक ददरीफ के मदद से। यहाँ पर है अपोतेक शांति रामशरण और कर्मचारियों, इन लोगों की तरफ से नवरात्र के शुभकामना आप तक पहुँचे।

ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, नवरात्र के उपलक्ष पर आप अब प्रवचन सुनेंगे और ये है मान्यवर परम पूज्य पंडित श्री परशुराम राम लोचन तिवारी जी के जरिए।

उजाला रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुनने वाले मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी को जय अम्बे, जय जगदम्बे। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग नवरात्रि के इस दूसरे दिन के कार्यक्रम में आपसे मिल रहा हूँ, और मुझे आशा है कि बड़ी ही खुशी के साथ, बड़ी ही विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ हम सब लोग भगवती दुर्गा की उपासना में लगे हुए। जीवन हमें कई बार मिलता है, पर मनुष्य जीवन मिल जाए और मनुष्य जीवन पाने के बाद में इसमें हम कुछ अपने आप को उठाने के लिए कर पाएं, ये बहुत ही भाग्य उदय का विषय होता है। और देखिए, हर एक बात में हमारी जो भावना है, विश्वास है, वही हमें उसमें सत्य संकल्प और सत्य श्रद्धा दे पाता है। जैसे कि नीति शास्त्रों में कहा गया है, तीर्थे मंत्रे देव द्विज दैवेज्ञ भेषज गुरौ यादृशी भावना सिद्धिर भवति तादृशी। तीर्थ में, मंत्र में, देवता में, ब्राह्मण में, ज्योतिषी में, वैद्य में, गुरु में, इन सातों में जैसी हमारी भावना होगी उसी के अनुसार हमें सिद्धि मिलेगी। अगर जो मंत्र हम जप कर रहे हैं परंतु मंत्र में हमारा विश्वास नहीं है, तो फिर उस मंत्र जप का क्या फायदा होगा। हम तीर्थ करने जा रहे हैं परंतु हमें तीर्थों में विश्वास नहीं है, तब फिर शहर घूमना और तीर्थ में जाना दोनों तो एक ही बात हो जाएगी। हम देवता की पूजन तो कर रहे हैं परंतु उस मूर्ति में हमारा विश्वास नहीं, मूर्ति को हम मान नहीं रहे हैं, तो फिर उस मूर्ति को रखने का हमारा फायदा क्या है। ब्राह्मण को तो हमने द्वार पर बुलाया है परंतु हमें अपने ब्राह्मण में विश्वास नहीं कि जो पूजन वो करवा रहा है वो ठीक है, तो फिर हमें उस ब्राह्मण को पूजने की क्या जरूरी है। ज्योतिषी के पास हम गए तो हैं कुछ विचरवाने के लिए, परंतु उस ज्योतिषी में हमें विश्वास नहीं है, तो फिर वहां जाने का हमारे फायदा क्या है। डॉक्टर के पास हम गए तो हैं परंतु उसकी दवा में और उसके बताए हुए जो रेसिप्ट है उसमें हमें विश्वास नहीं है, तो फिर हमारा जाना वहां पर निरर्थक ही है। और इसी तरह से गुरु को हमने बना तो लिया है परंतु गुरु में हमारी श्रद्धा नहीं, गुरु में हमारा विश्वास नहीं है, तो फिर उस गुरु का हमें फायदा क्या हो। तो इसीलिए नीतिकार कहते हैं कि तीर्थ, मंत्र, देवता, द्विज, दैवेज्ञ, भेषज्ञ और गुरु, इनमें जैसे हमारी भावना होगी उसी के अनुसार हमें सिद्धि मिलेगी। अगर जो हमारी भावना ठीक नहीं है, हमारा विचार ठीक नहीं है, हम उसमें विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि फिर हमारा पूजन उतना देर तक बैठना निरर्थक है। कई बार लोग सोचते हैं कि 6-7 घंटा तक पूजन में बैठना ही सब कुछ है, पर 6-7 घंटा पूजा में बैठने का कोई मतलब नहीं है। जब आप ही नहीं बैठ पा रहे हैं तो फिर 6-7 घंटा पूजा का मतलब क्या हुआ। आप 15 मिनट बैठिए अपने घर के पूजन में, आप आधा घंटा बैठिए अपने मंदिर में, परंतु उसमें आपकी श्रद्धा, उसमें आपकी प्रेम। उसी तरह नवरात्रि भगवती दुर्गा की प्रसन्नता, माँ की कृपा हमें मिले, इसके लिए हम और आप सभी करते हैं, उसमें हमारी पूरा श्रद्धा होना जो है तो जरूरी है। नवरात्रि के इस दूसरे दिन में हम जिस भगवती दुर्गा की उपासना करते हैं
उसको हमारे यहाँ पर भगवती दुर्गा की दूसरा रूप जो है ब्रह्मचारण कहा गया। दधाना करद्भ्याम अक्षमालाम कमंडलूम देवी प्रसिद्धतु मई ब्रह्मचारण्य अनुत्तमाम। माँ दुर्गा की नौ शक्तियों में दूसरा स्वरूप भगवती ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की आचरण करने वाली। वेदस तत्त्वम तपो ब्रह्म। वेद, तत्व और तप, ये तीनों शब्द ब्रह्म के अर्थ में लिया जाता है। तो यहाँ पर वेद का तात्पर्य होता है ज्ञान, तत्व का तात्पर्य होता है समझना, और तप का तात्पर्य होता है अपने आप को उस बात को समझने में लगा देना, तपा देना, उसमें अपने आप को ले जाना, पूरा उसमें अपने आप को मिला देना। भगवती ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है, इसलिए उसमें आप देखेंगे उसकी जो मूर्ति है, भगवती ब्रह्मचारिणी एक हाथ में माला और एक हाथ में कमंडलू को धारण किए हुए। कर पद्माभ्याम अक्षमालाम कमंडलू, उसके हाथ में अक्षमाला है, कमंडलू है, बड़ी ही सुंदर शुद्ध स्वरूप है भगवती की। इस मूर्ति में माँ की जो वस्त्र है वो है सफेद। सफेद का तात्पर्य होता है ज्ञान। ज्ञान हमारे यहाँ पर शुद्ध है, कैनेश जो है सफेद है, और उसका जो रंग है वो भी सफेद है। इसलिए भगवती ब्रह्मचारिणी उस रूप में हमारे और आपके सामने विराज। यही भगवती ब्रह्मचारिणी हमें हमारे व्रत में, पूजन में आगे बढ़ने की जो शक्ति है उस शक्ति को प्रदान करती है। इसके साथ साथ जो लोग योग साधना के द्वारा भगवती की नवरात्रि में उपासना इत्यादि करते हैं, वे दूसरा चक्र स्व अधिष्ठान में भगवती ब्रह्मचारिणी के रूप को धारण करते हैं। भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना से हमें त्याग, तप, वैराग्य, सदाचार और संयम में हम वृद्धि पावे, ऐसे आदि शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की हम उपासना करें और उसके चरणों में अपने आप को समर्पण करें। ये इन्हीं शब्दों के साथ इस दूसरे दिन के कार्यक्रम को हम करते हैं।

और प्रिय सुनने वालों, अभी प्रवचन आप सुने नवरात्र के उपलक्ष्य पर हमारे मान्यवर परम पूज्य पंडित श्री परशुराम रामलोचन तिवारी जी के जरिए। पंडित जी को हम सबकी तरफ से कहिए उजाला रेडियो और उजाला रेडियो के सभी सुनने वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।

नवरात्र के उपलक्ष्य पर सुनने वालों एक विशेष प्रोग्राम को आप सुने और यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। प्रोग्राम को हम लोग बना सके अमस्टरडम जायतो से अपोतेक द द्रीफ से अपोतेकर शांति राम शरण और कर्मचारियों के मदद से। इन लोगों की तरफ से नवरात्र के उपलक्ष्य पर शुभकामना बधाइयां स्वीकार कीजिए। हम लोगों की तरफ से धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों की मदद से प्रोग्राम हम लोग बना

ये उजाला रेडियो है हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। सुबह का उजाला हो या रात का समा, निशा की आवाज रहेंगी आपके दरमियान। जी हाँ, जैसे आप जानते हैं हर देंसदाह की सुबह 9 से 12 बजे तक हम प्रोग्राम पेश करते हैं और आपकी बेपनाह प्यार की वजह से आप हर मानदाह की रात 9 से 12 बजे रात तक इस प्रोग्राम से लुत्फ उठा सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पसंदीदा रेडियो स्टेशन उजाला रेडियो पर, क्योंकि हर रंग में है जिंदगी और हर जिंदगी में है सब रंग। तो सुरों के इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहिए। खुदा आपको हर उस चीज से नवाजे जिसमें आपके लिए खैर व बरकत और दिल का सुकून व इत्मीनान हो।

नाज शरीफ पेश था मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, कलाम था शबाब मिनल का। अब लीजिए रूहानियत अंदाज में भजन पेश है श्री हरिओम शरण की आवाज में, तर्ज है ऐसा प्यार बहारे मैया।

0: दुनिया।
1: प्रोग्राम की शुरुआत में पेश था मजहबी और भक्ति संगीत। यूं ही रंजिशों में गुजर गए, कभी वो खफा कभी मैं खफा, चाहतों के मोर पर, चाहतों के मोर पर कभी वो रुका कभी मैं रुका। वही रास्ते वही मंजिले, ना उसे खबर ना उसे खबर ना मुझे पता, बस अपने अपने आना में गुम, कभी वो जुदा कभी मैं।

शेराना अंदाज में पेश थी ये गज़ल, आवाज़ थी महेंद्र कपूर साहिब की, ख़ुद उन्हीं की मौसिकी थी, कलाम था कमाल हसन का। ये नज़र मुंतज़िर है तेरी आज भी, दिल किसी और से आशना ही नहीं, मैं क्यों रास्ता दूँ किसी और को, जब कोई तेरे जैसा बना ही नहीं, शाम से आँख में नमी सी है।

शाम से आँख में नमी सी है, आशा भोसले से पेश थी ये गज़ल। मौसिकार राहुल देव बर्मन की मौसिकी थी, कलाम था शायर गुलजार जी का। दिल की बातें हर किसी से नहीं कह जाती, पहचान भी हर किसी से बनाई नहीं जाती। दूर हूँ इसलिए अल्फाज ज़्यादा है, पास आ जाओ तो शायद आंखें ही सब कह जाएंगी।

दिल छू लेने वाली गजल पेश थी स्वर की मालिका बेगम अख्तर की आवाज में और महान शायर मीर ताकी मीर का कलाम था। पैसे की धुन में खोया वो मासूमियत का जमाना, भूल गया इंसान अपनों से दिल का रिश्ता निभाना। सोना चांदी तो कमाया उसने दिन रात जाग कर, पर खो दिया सुकून से सोने का वो पुराना ठिकाना।

मतलब का गाना पेश था हेमंत कुमार की आवाज में, संगीत का रवि का संगीत, दर्शक लिखे थे शायर साहिर लुधियानवी ने। अब आइए सुने मोहम्मद रफी साहब से ये।

कमाल का गीत पेश था, फिल्म नया दौर से लिया है, ओपी नैयर का सजाया संगीत, बोल था साहिर लुधियानवी का। अगला दो गाना पेश है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

अमर गीत पेश था, संगीत से सवारे थे सचिन देव बर्मन, गीतकार था मजरू सुल्तानपुरी ने। ये हवा, ये हवा, ये फजा और ये रात तारों भरी, धड़कनों में, धड़कनों में जाग रही है एक दास्तान नई। तेरे बाहों में, तेरे बाहों में सिमट कर मिटा दे सारे फासले, इस हसीन मौसम में खो जाए हम तुम कहीं।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा लता जी की आवाज में। आजकल के गीतों में वो बात कहाँ। मैं जानती हूँ कि आप सबका दिल अभी भी उन पुराने सुनहरी गीतों के लिए धड़कता है। तो आइए सुने मुकेश जी की आवाज में ये गीत।

सुनहरी दौर का सदाबहार गीत पेश था कल्याण जी आनंद जी का संगीत रचना, गीत रचना इंदिवार कथा। आशा भोसले से पेश है ये भरकता गीत।

सबको यहाँ ढूंढे जो तेरी अंजुमन। हाँ मगर राधी बोले मुझे तू क्या जाने, मैं हूँ शोला, मैं हूँ बिजली,

0: piccola, piccola, piccola, piccola, piccola, piccola, piccola.
1: जी हाँ, मन ही मन आप भी खुश हुई इस भरकता गीत सुनकर, है ना? तो लीजिए, पेश है अगला गीत गीता दत्त की आवाज में, वो भी किसी से कम नहीं थी, हर शैली में आसान से गाती थी, चाहे रॉक एंड रोल हो या डर्ट भरा गीत।

खुश मिजाजी गीत पेश था गीता दत्त की आवाज़ में, और इस गीत में चार चांद लगाने वाले थे अपने संगीत से संगीतकार ओपी नैयर। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये एहसास कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Ujala Lara Hair, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in de Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 2:30 Fakkel Optocht Kesaad. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert horen we wel heen. Our Fakkel Optocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra Kesaad. Ticket wacht per grillena via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting.

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। यहाँ से प्रोग्राम का दूसरा भाग शुरू करते हैं, यानी कि फिल्मी दुनिया पेश किया जाएगा।

ये आवाज़ स्वर की देवी लता मंगेशकर की आवाज़ है जो कायनात में सदा गूंजती रहेंगी। हम सब के लिए ये आवाज़ एक रूहानी सौगात है। संगीत के चाहने वालों के दिलों में ये आवाज़ घर कर गई। आज से लेकर कुछ प्रोग्रामों में इस महान मारूफ शख्सियत के बारे में हम बयान करेंगे। स्वर की मालिका लता मंगेशकर के बारे में, उनकी आवाज़ के बारे में बयान करना तो सूरज को रोशनी दिखाने की बराबर है। फिर भी हम कोशिश करेंगे लता जी की संगीत सफ़र के बारे में इत्तला करने को, और कैसे थी लता जी की बचपन, क्या हम सब के बचपन जैसे थी या सबसे अलग। हाँ, आप सुनने वालों से ये कहना है कि प्रोग्राम के दौरान एक के बाद एक लता जी की आवाज़ में दिल छू लेने वाले नगमे सुनने को मिलेंगे, जैसे कि ये अमर गीत।

फिल्म वो कौन थी का नगमा पेश था लता मंगेशकर की आवाज़, मौसिकार मदन मोहन की मौसिकी और शायर राजा मेहदी अली खान का कलाम इस नगमा को अमर कर दिए। जब भी लता जी लाइव कॉन्सर्ट के लिए नगमे चुनती थी तो अक्सर ये नगमा शामिल करती थी। हम सब जो संगीत सुनने में शौक रखते हैं, लता मंगेशकर की गाने बचपन से सुनते आए हैं, उनकी रूहानी आवाज़ से कितना सुकून मिलते होंगे। पर कैसे थी लता मंगेशकर की बचपन, कुछ प्रोग्रामों में हम बयां करेंगे। पहले हम आपको ये गीत सुनवाते हैं।

फिल्म नागिन में से ये गीत लिया है और ये गीत अदाकारा वैजयंती माला पर फिल्माया गया था। साथ में थे अदाकार प्रदीप कुमार। तो जैसे मैंने कहा, हम सब बचपन से लता मंगेशकर के गाने सुनते आए हैं, पर उनकी बचपन कैसे थी? सब पांच भाई बहने थे, लता, मीना, आशा, उषा और भाई हृदयनाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर का बाप दादा गोवा के रहने वाले थे। रिश्तेदार गणेश भट्ट और येसु भाई के कई बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा था दीनानाथ। माँ येसु भाई महसूस किया कि बेटा दीनानाथ अलग था। उसे संगीत सुनने और गाने को शौक था, इसलिए बेटा को गुरुजी के पास सारंगी सीखने को कहा। पर बेटा दीनानाथ कुछ ही दिन सारंगी सीखा, फिर तबला। इसमें भी मन नहीं लगता था। एक दिन वो गुनगुना रहा था तो उनकी गुरुजी के बीवी ने कहा, बेटा आप सारंगी नहीं, तबला भी नहीं, आप गाने पर ध्यान देना। इसी तरह येसु भाई का बेटा दीनानाथ शास्त्रीय संगीत पर फिर ध्यान देने लगा, जिसमें उनको सुकून मिलता था। सुबह शाम वो रियाज करता था। ये देखकर गुरुजी खुश था और जाने माने गायिकाओं ने दीनानाथ की आवाज को तारीफ करते थे। दीना को एहसास था कि लोग उनकी आवाज पसंद करते थे। कई थिएटर की डायरेक्टर्स दीनानाथ को मौका दिया थिएटर में गाने और साथ में एक्टिंग करने को। थिएटर के बाद दीनानाथ छोटी उम्र में किर्लोस्कर संगीत मंडली गुरुह में उसे शामिल किया गया। गांव-गांव और शहरों में उनके बारे में चर्चा होता था, उनकी आवाज और अदायगी पर। कई बड़े बड़े संगीत के जाने माने लोग दीनानाथ से कहा कि उसे एक ही शैली को, मतलब स्टाइल को अपनाना है। तो उसने खुद एतमाद के साथ बाल गंधर्व शैली में ध्यान देने लगा। मतलब जैल फर्जेकर से कहा कि वो किसी के नकल कभी नहीं करेगा, उसे अपने आप पर यकीन है। हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर की बाप दीनानाथ के बारे में, कैसे था उनके बचपन। एक गीत के बाद कहानी हम आगे बढ़ाएंगे।

फिल्म बड़ी बहन में से ये गीत लिया है जो नेखती नेखन फेतह में रिलीज हुआ था। संगीत से सवारे थे हुस्नलाल भगत राम, आवाज थी स्वर की देवी लता मंगेशकर की। और हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर का वाली दीनानाथ की, कैसे था उनके बचपन। इस गीत से पहले आपने सुना कि दीनानाथ को अपने आप पर, अपने काबिलियत पर यकीन था, पर किस नाम से लोग उसे दुनिया में पहचानेंगे। वो खुद अपनी पहचान बनाना चाहते थे। दीनानाथ अपने परिवार के साथ एक छोटा सा गांव मंगेशी में रहते थे और परिवार का नाम था मंगेश। और जैसे मैंने कहा, दीनानाथ खुद अपना नाम कायम करना चाहते थे, इसलिए अपना नाम मंगेश के साथ कर शामिल किया और कहा कि दुनिया उसे अब दीनानाथ मंगेशकर का नाम से पहचानेगा। वो किर्लोस्कर संगीत मंडली गुरुह के साथ महाराष्ट्र से बाहर दूसरे शहरों में मकबूल था। दीनानाथ 18 साल के उम्र में अपना खुद का मंडली कायम किया, बलवंत संगीत मंडली, जिसमें साथ शामिल किया कृष्णा राव कोल्हापुर, दयारन तख्त की मशहूर अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुर का दादा जो था। दीनानाथ की आवाज़ और नाटक इतना मशहूर था कि सिर्फ उनका नाम सुनकर दूर दूर से लोग प्रोग्राम देखने आते थे। उनकी आवाज़ सबसे अलग थी, पतला थी। एक दिन किसी ने दीनानाथ से कहा, दीना, आपकी आवाज़ कुदरत की देन है पर ज़रा सा पतली। आप हर रोज़ एक चम्मच ब्रैंडी पीना तो आप ज़रूर फ़र्क महसूस करेंगे। जो उसे कहा गया वो किया, पर एक चम्मच के बदले रोज घूंट पर घूंट पीने लगा। पर दीनानाथ मंगेशकर को अब रोकने वाला कोई नहीं था। जिन्होंने थिएटर की कहानियाँ लिखते थे, फ़खर से बलवंत संगीत मंडली के लिए लिखते थे, और गुरु वासे भव जिसे दीनानाथ क्लासिकल संगीत सीखते थे, उल्टा वो अब दीनानाथ का शागिर्द बनना चाहते थे। ऐसा महान मारूफ फनकार था श्री दीनानाथ मंगेशकर, जो लता, आशा, उषा, मीना और हृदयनाथ का वाली था। पहले हम एक गीत सुनवाते हैं, फिर कहानी हम आगे

फिल्म टावर हाउस में से ये गीत लिया है। संगीत देने वाले थे रवि। श्री दीनानाथ मंगेशकर के बारे में हमने आप सुनने वालों को छोटे रूप में बयान किया। माँ का दर्जा भी अहम है, तो जैसे हमने कहा गीत से पहले दीनानाथ मंगेशकर 18 साल का हो गया था और शोहरत की बुलंदियों पर था। अब कई बड़े बड़े ख़ानदान से शादी का पैगाम आते थे, उन सब में गिनती थे सेठ हरिदास रामदास लाड, जिसके 4 बेटियां थीं, जमुना, नर्मदा, शिवंती और गुलाब। सब तय होने के बाद सेठ हरिदास की बेटी नर्मदा की शादी हुई दीनानाथ मंगेशकर से। फिर 4 साल बाद नर्मदा और दीनानाथ का घर बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने के बाद नर्मदा संभला नहीं और फिर थोड़ी ही दिन बाद नर्मदा ने दुनिया से अलविदा लिया। बच्चे को नर्मदा की छोटी बहन शिवांती संभालती थी। अब शिवांती से बेहतर माँ का प्यार और कौन दे सकती है। इसलिए सेठ हरिदास ने दीनानाथ से इल्तजा किया, सिर से अपना पगड़ी उतार कर सामने रखा और कहा, मेरी बेटी शिवंती से आप शादी कर ले। तो इसी तरह दीनानाथ मंगेशकर ने नेखतिन सेफ नतवेतक में नर्मदा की छोटी बहन शिवंती से शादी किया। पहले आपको एक गीत सुनवाते हैं। जुगल गीत है, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और करण दीवान की आवाज़ों में।

मैं भी वहीं रहूं मेरा साजन जहां रहे। इस गीत से पहले आपने सुना कि नर्मदा के गुजरने के बाद दीनानाथ मंगेशकर ने उनकी छोटी बहन शिवांती से नेहतीन सेवनत्वेतख में शादी किया। कहानी दिलचस्प है, अगले प्रोग्राम में हम बयान करेंगे, आप प्रोग्राम को सुनते जाना।

अभी हमने स्वर किरेवी लता मंगेशकर के बारे में बयान किया, किस खानदान से थी और उनके बाप दादा की पैदाइश कहाँ हुई थी। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं, आइए सुने ये गीत।

अमर गीत पेश था रोशन की मौसिकी थी, तर्स लिखे थे शायर साहिर लुधियानवी ने। अगला गीत पेश है गायिका आशा भोसले की आवाज़ में।

संगीतकार राहुल देव बर्मन का सजाया संगीत और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा तर्ज था। आवाज़ें थी सुरेश वाडकर और आशा भोसले की। अगला गीत पेश है, गाने वाले हैं मुकेश जी।

खूबसूरत अंदाज में पेश था कुमार सानू की आवाज में ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा तर्ज था। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं, जो आम्स्टर्डम स्टूडियो से नशर किया जाता है। अब आइए सुने अगला गीत, कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की आवाज में।

सदाबहार गीत पेश था। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा तर्ज था। आवाज कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की। अब आइए सुने फिल्म किस्मत में से अगला गीत। गाने वाले हैं महेंद्र कपूर।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये गीत। संगीत से सवारे थे ओपी नैयर, बोल था एसहा बिहारी का। अजीब मोड़ पर लाकर खड़े कर दी है जिंदगी, ना आगे बढ़ने का रास्ता है ना पीछे लौटने का हौसला।

अभी आपने लता मंगेशकर से ये खूबसूरत नगमा सुना। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। उजाला रेडियो जो अपने स्वरों से घर घर को उजाला करते हैं।

फिल्म मेरा दोस्त में से ये गीत लिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सजाया संगीत था और गीतकार आनंद बख्शी की। दुल्हन बनी हुई खरी हो तुम लिबास नूर में, कि सर झुका रही है चांदनी मेरे हुजूर में, के आसपास कितने ख्वाब झिलमिला गए। द टेक्स्ट इज सो रोमांटिस, ik zal mijn best doen om het in het Nederlands te vertalen. Je staat daar in een gewaad van puur licht als een bruid, zo mooi dat zelfs het maanlicht buigt uit respect voor jouw schoonheid.

रोमानियत अंदाज में पेश था ये नगमा और आवाज़ में चार चांद लगाने वाले थे मोहम्मद रफ़ी साहब और तर्ज को लिखने वाले थे महान शायर मजरू सुल्तानपुरी। अब आइए सुने लता जी से ये नगमा।

अजीब दास्ता है ये। फिल्म दिल अपना और प्रीत पराये में से ये गीत लिया है। शंकर जयकिशन संगीत से सवारे थे, बोल था शैलेंद्र का। अब आइए सुने गीता दत्त से ये गीत।

जी हाँ, मन ही मन आप भी खुश हुई इस भरकता गीत से, है ना? अब आइए सुने किशोर कुमार से अगला गीत।

कमाल का गीत पेश था राहुल देव बर्मन, संगीत से सवारे थे, बोल था शायर जुगेश का। अर्ज है, तेरे चेहरे की वो खूबसूरत कहाँ से लाऊं, हर लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहाँ से लाऊं, मैं मांगता हूँ हर सफर में साथ तेरा, तू ही बता मेरे हाथों में वो लकीर कहाँ से लाऊं।

और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार। खादिमा थी निशा।

Het is maandag. Maandag, Bara Tarik, Oktoberka programma. Zonder hem, mijn hoe Lloyd maar weer. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Ja, je hebt me net een uur lang ook gehoord met Robbie Maka. Maar we gaan lekker verder door. Aatske Shamke programma. Coffee Chai Middagshow mee. En zometeen sluit hier aan hier in de studio. Abbe studio mee aan en welle Anand Chandrikasin, dus ik staat hem baat kunnen wat hij, met hem praat ik dan over het nieuws van vandaag, van de komende dagen, ja, kuch aur luchtig onderwerp Riga, toch hem baat kringen. Anand is onderweg, maar ham Martina. Ujala Radio के जरिए प्रोग्राम में हम एक नफ़ा आपको सुनने को जा रहे हैं और आज के इस शाम के प्रोग्राम में लातो इवे नार एन पार नुम्स लुइस्टरन एंड दन ज़ोमतेन कम्त आनंद वेल हियर इन द स्टूडियो इक हैव सन कॉफी ऑल क्लार स्टान सन मिसलिक कॉफी मोमेंट कम्त एर ओक ज़ोमतेन आन और आज हम सोचली की ई गनवा चलावे खातिर कभी कभी जब तू सवेरे सवेरे जगले या जगे हैगा एंड ये स्टार्ट अप नाश ए पार्टनर तो एक ही बात जरूर बोलो थोड़ी है

0: जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सी मुस्कुराओ या उजाला कॉफी चाय मिनक शो इस प्रोग्राम जहाँ पे हम लोग तो लोगों के भी हंसाएला या हंसाएला खनी हंसाएला ना रोलाएला मैं खनी हंसाएला हम लोग सोहा पसंद की आवाज में भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है सुनो वालों और उजाला रेडियो के जरिए लातो वेव खान नार एट न्यूज या हेडलाइंस फॉन वंदाग यू आर उजाला रेडियो पर Een nieuwe week, een nieuwe koffie chai. Voor deze maandag heb ik de nieuwsselectie opnieuw opgebouwd voor jullie. Orkon Samachar Hega. Grote IT-storing bij Albert Heijn, Ethos en Gallinghal. Dus toen man had je uit boodschappen kreeg. Want verkeerde prijzen, zei het Hega. Hoi ze keer toen manga varie. Dus bestrijd toen had je je uit. Mwape. Door een cyberveiligheidsincident zijn website en apps niet beschikbaar. Boodschappen worden niet bezorgd en in winkels kunnen verkeerde prijzen op de elektronische schapkaartjes staan. De oorzaak wordt nog onderzocht. D66 wil kinderen bij vermoedens van ernstige mishandeling sneller kunnen spreken. Een nieuw initiatief voor wetsvoorstel moet hulpverleners de mogelijkheid geven om binnen 48 uur met een kind te praten. Zo nodig zonder toestemming van de ouders. Vol elektriciteitsnet belemmert verduurzaming Nederlandse industrie. Fabrieken willen overstappen van gasovens naar elektrische machines, maar moeten soms jarenlang wachten op een zwaardere stroomaansluiting. Bedrijven waarschuwen dat investeringen daardoor naar het buitenland kunnen verdwijnen. Max Verstappen, eindelijk Ujito. En of hij wereldkampioen wordt, nou, dat moeten we nog zien hoor. En Trump kondigde energiebestand aan, maar Russische aanvallen gaan door. Nou ja, dus wat voor zin heeft het als hij elke keer zegt van amico bestand aankondigt, Krila. En die gasten gaan maar door daar in Rusland. Albi Samachar Hesun Waluashkis. Koffie chai middagshome. Aanstaande woensdag is er ook een openbaar vervoerstaking in Nederland. Dus als jij naar je werk moet, check even of je kan gewoon thuis werken. Voor de mensen die thuis kunnen werken, beste toegereden. Grote staking ook in België treft openbaar vervoer en publieke diensten. Vakbonden protesteren tegen bezuinigingen. Er rijden minder treinen ook van en naar Nederland bij de Vlaamse publiek. Omroep VRT worden uitzendingen geschrapt of ingekort. Nieuwe dodelijke aanval op luchthaven Riyadh. Bij de vierde aanval in 5 dagen is opnieuw een dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook een luchthaven in Dammam is getroffen. De kans op verdere escalatie in het Midden-Oosten groeit. Ihapta mee? Ihapta? Mooi weer hier. Het is vakantie. Noord-Holland mee vakantie. De kinderen zijn thuis. Ook een hele prettige vakantie toegewenst namens Ujala Radio. Sabi Bachoko. Alle studenten komen. En als jij vrij bent, kamen ze tot Jouti Lillebarte. Omdat de kinderen vrij zijn, ook een fijne vakantie. Doe wat leuks met je kinderen. Maak mooie herinneringen. Ha, oh, ik had niet vakantie willen, toch? Om herinneringen te maken. Doe wat leuks. Of luister naar Ujala Radio. Koffie Chai Middag Show. You are Ujala Radio ye hai sunwalo aur hum intezar kar rahe hain Anand Chandra Kasin ke intezar mein
1: hai. Bas itna samajh lo ki ghar mein jawan beti seene par patthar ki sil ki tarah hoti hai. Basanti ka byah ho jaye to chain ki saans lu.
2: Haan sach kaha mausi aap. Bada bojh hai aap par.
1: Lekin beta is bojh ko koi kuye mein to phenk nahi deta. Bura nahi manna. Itna to puchna hi padta hai ki ladke ka khandan kya hai. उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है?
2: कमाने का तो यह है मौसी, कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
1: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
2: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
1: हार जाता है?
2: हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
1: तो क्या जुआरी है?
2: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है।
1: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
2: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं, वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी।
1: अरे बेटा मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
2: मौसी आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
1: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
2: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं।
1: अच्छा तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
2: बस मौसी खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
1: एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है।
2: अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
1: पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं।
2: अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया, बेचारा वीर न जाने क्या करेगा।
1: अरे बेटे
0: या मोई डायलॉग आई द फिल्म शोले, अमिताभ बच्चन मैट मौसी, माई मौसिया के नाम हम ना जाने के कहना है।